आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सन ब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345 9232 860 0300 5858481।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: खुश रहे भाई। मैं सीमा नूर हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा है बटरग्राम से। ओह माय गॉड, बटरग्राम वाला भी पहुंच गया भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग संगेम शाह सर भाई, प्रोग्राम कोले दे यो गमजन शेरा तू आए करा एम बरीरा फ्रॉम बटरग्राम। ओह माय गॉड, बरीरा बटरग्राम से याद किया भाई। हाय ब्रो सिंगे शो नाइस अप मी निदा, थैंक यू सो मच। निदा ने याद किया स्वाबी से। ओके जी, अभी कौन है भाई? सलाम भाई सिंह मी समय खे खबरे कवे पमीना वालो बांधे पा शुगर लगा हुआ अला वही ऐसा जान यम दुन्ना अला लो मत गोरी जी ने वापसी में लंडे में कहा सलाम सर जी वही तुमरा खोगे खबर के खल को तब शुगर हो लगे मीना बताओ ना लगो शुगर खैर देखो सलाम जी सोक जी दर्द जमा नेम अखली कना नो मान मान दे बखले खा सिंगा सोक जी दर्द जमा नेम अखली कना नो हागा मान दे बखले पाकार मी तसलाम पटाखा लेकिन जमा पबद बानी नु मखरी।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई, हूँ शो शो शो चमकुए।
0: प्लीज प्लीज प्लीज मी एम डेर ज्यादा मना ना कुछ शुक्रिया। सलाम शो इज गुड माते यो शेर हुआ लाइव फ्रॉम अंबार डेर ज्यादा मना लाइव पर खैर आले। सलाम शाहजी सिंह टोलू जी ने खुद सलाम आयशा अली फ्राम अंबार हो माई गैड सिंह ठीक ठाक है चलो ऐसा करते हैं तुम पे मरते हैं चलो ऐसा करते हैं तुम पे मरते हैं हमने तो वैसा भी मरना ही मर ही जाना है हमने तो वैसी भी मर ही जाना है। ओ माई गैड हश्ता कुल अस्सलाम वालेकुम शाहजी हो आर यू। हजरत अली ने हजरत अली अमा देर जबरदस्त मिसालू ने लड़े दुबई टबे तोड़ दिखा रहे मुकम्मल स्पिन दे शांति ओके माशाल्लाह जमा यारे टिंग नशे जखो दुख दर्जन बंगड़ी दरवाजे माता उमा रे गत खल का खुदा से खतरनाक खतरनाक टपी रैली अल जमाने अखल का ना पांच पेरे उया गुली पा शांति गुली गुली सचल बदे वली निस्तानुम सदे निस्तानुम खोई चाहिए जलवाखल सड़ी खुले कर गई निस्तानुम सिंह वाले लाडी लाडी लाडी स्थानुम बार बार नशे मगस्ते बोले खुले ने बल सूजी बाई था सो बेका था बेका पे चले आओ पे चलू बोले ना चरता जिक्र द यार की माथ बेलले यार मख के शान बात पहले ले यार रामख किसी आई एम मारिया मारिया बखेर आले मामू मेला भी आरजे स्पोक में करार तस्सलाम अनाया हरीम बस ते करना मैसेज ना मकेनोर भाई भाई सा शो द नूर शो ना डेरा नाइसवी द नूर शो गा ना डेरा नाइसवी बिल्कुल स्टार सुबह शांति नी माहा माहा वेलकम बखेर आले स्टडी में शीता सिंह खे अटैक द सिन्ना भाई।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो औरिदुन को तासो आवाज औरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे।
3: रेडियो अमन नेटवर्क,
4: पैगाम अमन है,
5: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।